0: 接下来请继续收看风月同天。
1: जब सुबह उठता हूँ तो दो चीजें मुझे याद आता है, सिंगर मास्टर और सूर्यफुल डिजाइन, क्योंकि हर रात सोते टाइम में मैं एक अच्छे इंसान बनने के लिए आशा करता हूँ।

साल जी राधा मंदिर पर एक सुंदर कहानी बुद्ध भगवान के ज्ञान प्राप्त होने से पहले वो कमजोर थे और मैं राजकुमार सुजादा द्वारा दान किए खीर को ग्रहण किए और फिर बुद्ध भगवान ठीक हो गए। लोग इस जगह के सुजाता गांव के और आजकल जाते हैं, अक्सर यहाँ यात्रा करने के लिए आते हैं। 2500 सालों से हम यहाँ पीढ़ियों से बसे हुए हैं, लेकिन हमने गरीबी को भी रासत में पाया और इसे बदल नहीं सकते। एक अनुभव लेकिन हमने गरीबी को भी रासत में पाया और इसे बदल नहीं सकते। एक अनुभव दलित के रूप में मैं उचित

0: सब्जियां बेचने के लिए पूंजी होने को उम्मीद है, लेकिन अतीत में जब तक मुल्कात सूची से नहीं हुई, मैंने कभी सपनों को अपनाने की हिम्मत नहीं की। बकरौर गांव बहुत गरीब है। कुछ विदेशी चरेसी संगठन अक्सर हमारे तस्वीर लेने आए, लेकिन गांव में कुछ बदलाव नहीं है। सूची वॉलंटियर इस समय में आए तो मुझे लगा स्थिति होगी जैसे अन्य संगठनों की तरह, लेकिन जब मैंने वास्तव में उन्हें गांव के सफाई में मदद करते हुए देखा तो मैं चौंक गया।
1: हेलो हेलो या
0: मैंने देखा कि सूची वॉलंटियर घर घर जाकर पता लगाते थे कि कौन बीमार, अकेला और बूढ़ा, और किसको दैनिक जीवन में मदद की ज़रूरत है, और फिर हमें सामान देने लगे। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि मैं महसूस कर सकता था कि वे हमें अपने दिल की गहराई से प्रेम और देखभाल कर रहे थे। हालांकि मैं दलित से हूँ, सूची वॉलंटियर इसे एक मुद्दे के रूप से नहीं लेते। मुझसे उन्होंने कहा कि सभी लोग समान न पैदा हो, यह वह भावना है कि जिसके बाद से 2500 बरस पहले बुद्ध भगवान ने किए। मैं गांव वाले को यह बताने गया कि जब तक हम प्रतिदिन एक रुपया बचाते हैं, हम गरीबों की मदद के लिए सूची को दान दे सकें, ताकि बीमार डॉक्टर को देखा सके और गरीब खाना खा सके। जब वो मुझे सूची का वॉलंटियर वर्दी पहनने में तो मैं बहुत खुश था। गांव वाला मुझसे कहते हैं मैं पहले जैसा गंदा नहीं लगता। जब वो लोग मुझे सफ़ेद जूते पहनते हुए देखते हैं, उन रिया भी कहते हैं कि ये सूची वॉलंटियर यहाँ। मैंने अपने दोस्त गंगू के बारे में भी कहा जो पहले मंदिर में भीख मांगा। मैं सूची वॉलंटियर को मैंने सूचित किया ताकि वो मदद प्राप्त कर सके। मैंने सूची का चावल बैंक को बढ़ावा दिया, अगर आप हर दिन एक मुट्ठी चावल बचाते हैं तो अपने आप को 80% खिला सकते और बाकी 20% किसी और को मदद कर सकते। किसी ने मुझसे पूछा अगर सूची ना होता तो मैं क्या करूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक भिखारी का जीवन भी परिवर्तित हो सकता। अब मेरा जीवन परिवर्तित हो गया और मैं एक अब बेहतर इंसान बन गया।